0: So the name of the raga is Jejavanti, which is Dvijavanti in the South Indian or Carnatic tradition, Jejavanti in the North Indian or Hindustani tradition. Let's get Khurshid Anwar on board to tell us a little bit more about this raga.
1: Jejavanti, Khamaj Chhat ka sampoorn raga hai. Isme dono gandhar aur dono nikhar lagaye jate hain. Vadi sur, rikhab aur samvadi, pancham hai. गाने का वक्त रात का दूसरा पहर है. जयजयवंती के आरोह में पीवर गंधार और निखार और अवरोह में कोमल गंधार और निखार लगाए जाते हैं. कभी कभी पीवर गंधार अवरोह में भी आ सकता है, मगर कोमल गंधार कभी आरोह में नहीं आएगा. इस राग के अवरोह में मध्यम से रिखब पर आकर कोमल गंधार पर जाते हैं और वहीं से वापस रिखब पर आ जाते हैं. इस तरह कोमल गंधार दोनों तरफ से रिखब में घिरा रहता है. जयजयवंती एक बहुत ही मधुर राग है. इसमें मंद्र यानी निचली सप्तक के पंचम और मध्य यानी दरमियानी सप्तक के रिखब की संगत बड़ी खूबसूरत मालूम होती है. इस राग में गौड़, बिलावल और सोरठ इन तीन रागों का मिलाप माना जाता है, मगर इन सब में से सोरठ का अंग ज्यादा नुमाया रहता है. सानी धापा धामा रे का टुकड़ा जयजयवंती और सोरठ दोनों में आता है, मगर रिखब पर पहुंचकर जब हम कोमल गंधार दिखाते हैं तो सोरठ का जादू टूट जाता है. पकड़ रे गा रे सा नीधा पा रे आरो सारे गामा पा नीसा अवरो सा नीधा पा धामा रे गा रे सा.